धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग धड़ांग